0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य गुजरातस्य वडोदरायां 35,000 कोटि रूप्यतोप्यधिक मूल्यानां विभिन्न विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासः च कृतः। उक्तं च यत् भारतं वैश्विकोत्पादन केन्द्र रूपेण उदितमस्ति। मुंबय्यां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 26,000 ग्लोबल फिनटेक फेस्ट इत्यस्य उद्घाटनं विधास्यति। बॉम्बे उच्च न्यायालयेन अद्य प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं प्रति 19-2023 प्रदत्तं वक्तव्यं सम्बद्धे मानहानि प्रकरणे कांग्रेस सांसदस्य राहुल गांधिनः विरुद्धं प्रत्याख्यापितस्य समाह्वानपत्रस्य निरस्तीकरणं निराकृतम्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य त्रिदिवसीय श्रीलंका यात्रायै कोलंबो नगरं सम्प्राप्तवान्। अपि च अहमदाबादे अनुष्ठीयमानायाम् ऐषमः विश्व दिव्यांगधनुर्क्रीडायां भारतेन 2 स्वर्णपदके 1 रजतपदकं च अधिगतम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य गुजरातस्य वडोदरायां 35,000 कोटि रूप्यतोप्यधिकमूल्यानां विभिन्न विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासः च कृतः। प्रधानमन्त्रिणा पश्चिम समर्पित मालवाहक मार्गस्य 3 प्रमुखाः खण्डाः राष्ट्राय समर्पिताः, येन मालवाहक मार्गजालस्य पूर्णं परिचालनं सम्भविष्यति। प्रधानमन्त्री मोदी न्यू सानन्द, न्यू मकरपुरा, न्यू उम्बरगांव तथा न्यू JNPT इत्येतेभ्यः स्थलेभ्यः मालवाहक रेलयानसेवानां हरितध्वजं प्रदर्श्य शुभारम्भं कृतवान्। तेन टाण्डा मार्गस्य वडोदरायाः च मध्ये नवीनयात्रिरेलसेवायाः शुभारम्भोऽपि कृतः। एषा सेवा अलीराजपुरस्य दूरस्थेषु जनजातीयक्षेत्रेषु राष्ट्रियरेलजालस्य सम्पर्कं स्थापयिष्यति। विशालजनसमूहं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् भारतं वैश्विकोत्पादनकेन्द्ररूपेण उदितमस्ति, तथा अधुना देशः स्वयमेव उन्नतयोः रेल मेट्रो चेत्येतयोः यानयोः कक्षनिर्माणं करोति।
1: आज 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि